खामोश पुतली सी काया जो बहुत चली और चलती रही और चलते चलते आ बैठी वह झुकी कमर गंगा तट पर।

प्रहार समय के सहती रही, दूर शून्य में जुगनून जैसा एक पखेरो उड़ता देखा, शायद कोई

0: और चली, कदम कदम कुछ और चली, कदम कदम कुछ और चली।
1: J'écoute Radio Pays des Raux et RPH Sud et c'est super.